खुदा खा चले था उतना बिकाई का जल थल जिया पूरिया लोहा कर कर ओए आखे सो तू है जाना तेरा पितरी सार नाम को भगता भुख सला सचना।

0: पंडित हिकमत हो जत संजय कर पिया
1: धर्मी धर्म करे गोवावे मंगे मोह द्वार यति सदावे जुगत न जाने छाड़ बह कर बार सब को पूरा फोवे घट न कोई आखे पत परवाना पूछे पाइए ता नाम तो लिया जा पे मेला पहला वधी सुख जग

मुख से प्यारे करवट दे मोको कहे कुमारे जाग सलो नड़िए भोला गुरुवानी राम जिन सुन मनेड़ी अकथ कहानी राम सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी एक ओंकार सतनाम करता।

धारू वाजे पंच सदित कर सुपागे कर सुपागे शब्द वाजे कलाजित कर तारिया पंच दूत दवास गीते काल पंच कुमारे तोरे करम पाया तुझिन को से नाम हर के लागे कह नानक ते सुख तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया तेरे सगल सूरे दुख रोग सुनता पुत्र सुनी सची वाणी संत साजन पहे सरस पूरे गुरु ते जानी।

के देव महादेव के देव राम के मुहैया महाबाल के महाबाल के राजन के राजा महासाज के साजा महादेव के जोग रैया ब्रह्मशाल के राजन के राजा महासाज के साजा महादेव के जोग रैया ब्रह्मशाल कामना के घर है कि बुद्धता तो हर है सिद्धता के साथी है के

सकल समग्री तुमरा तुम ते हो ऐसो तुमरी गत मित नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सुमर कै गुरु नानक लई तयाय। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाम सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनो निदा बिताए, सब थाई होए सहाय।

पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखानु सिखी दान, केस दान, रत दान, विवेक दान, विसाह दान, प्रसाद दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृत सर जिया दे दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन्नी वा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा

नाही कोय, ना को हो आ ना को होए। जे बड़े आप ते बड़ तेरी दात, जैना दिन करके कीती रात।

चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रह रास रहाओ हर जन के बड़ भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सहें मिल संगत गुण परगास जना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवहे उद्दम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जनते उपाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बाईता कोई ना किसकी तरया सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया ऊडे ऊड़ आवे सै कोंसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में ही सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओ ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वहीं सब त्या वहीं तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दया वह संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्या वहीं हर त्या वहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पै जैना हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फांसी
जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापहें जपहें बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावें मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई, तुद आपे पावे सोई वरत जी, तू आपे करहें सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरे सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जान होई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साईं।

रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरिया वो सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद में दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सरवरड़ भईले निवासा, पानी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले, मान एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसर तेरे गुण गले आ रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जेना तू ना ही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाख भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसमी कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हद रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो हो, आप हाथ दे मोहे बचाबो हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबै रिनको आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहों सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख मार तारी है,
चुनचुन शतर हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उपरी है, मरण काल का त्रास निवरीय हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करियो रक्षा, राख ले ओ मोहे राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सलोक सवारा, नमस्कार हैं ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बध कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत वेद वेद अर अलम, रंकार निर्विकार निरलंब, आदे अनिल अनादे असंभ, ताका मूढ़ी उचारत पिदा, जाको पेव न बावत बिदा, ताको कर पाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ पेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, रंकार का चीनत नह भिव, आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के भिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंडज जे रज से ताज कीनी, उतबज खान बहर रच दीनी, कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो सिमट पयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबारे असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पत्ता, सकल मलेच करो रणघत्ता, जे आस तो जे तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को इक बार ते है, ताके काल निकट न है,
रक्षा होए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हरयो, ताकि ताप तनक मैं हरयो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शवय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहें ओबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर्व ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी, सर्व ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख दे ले हो बचाई, सवैया पाही गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सभा बहु भेद कहें, हम एक ना जाने हो, सिर असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कह हो सब तो ही बखाने दोहरा, सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तुहारो द्वारे, बहें गहे की लाज अस, गोविंदास तोहार, सगल दो आहर कौ छाड़ के

गोविंदास्तोहार राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगाव हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या ना ही घर तेरा घर दा तेरा सब किछ है जिसने ही सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसा भए नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जैना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एहे वड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द दरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तिद कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से राम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तित घर अनहद बाजे आनंद सुनहो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पौनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाहद तुरे मंदामणि महला पंजवां थाल विच
तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिये सब

0: तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरेया तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम

बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती।

दूर कतहुं ना जाई रब रहा सरबतर मैं मन सदा त्याई। जय जय पिखों तह हजूर दूर कतहुं ना जाई रब रहा सरबतर मैं मन सदा त्याई। ईत ऊत नहीं बिछड़े सो संगी गनिए बिन से जाए जो निमख में सो अलप सुख पनिए। राहौ प्रतपल्ले अप्याओ दे कछ ऊन ना होई सास सास समालता मेरा प्रभ सोई। अछल अशेर अपार प्रभु ऊंचा जाका रूप जप जप करे आनंद जन अचरज आनूप। सामत देहो दयाल प्रभु

0: मन सदा ध्याई दिसूगा। आखो सतनाम श्री, सतनाम श्री वाहिगुरु।
1: पहाड़ी राजा कहना देवियां मनाइयां यज्ञ किते, मगर यार कदी दिसया दिसदा दिसदा वैसे हाँ दिसदा है कि यार सारे बोलो अगे कमाल दी गल बाप दी गल पंडित नू राजे नू जदों ए गल मेरे पातशाह ने कही ते पंडित राजा कहिंदा नहीं महाराज सानू कदी दिसया नहीं। फिर बापू ने गल कीती उन्हां दे बोल तां नहीं है मैं माफ़ी मंग लां दिल के आईने में, दिल के आईने में है तस्वीर यार, इत्थे आ तस्वीर उहदी, जरा गर्दन चुकाई तो देख ली, इत्थे सिर मूँह चुक के ते किसे नूं नहीं दिसिया, इत्थे ते सिर वह चुकदे जिहड़े हंकारी हुंदे। आखो वाहिगुरु, जरा गर्दन ज्यों ज्यों नाम जपदे फकीर की कह रहे सिर थले नूं करी आउंदे आ, बंदगी नाल भांडा भर गया, जिस भांडे च कुछ पै जे वह भारा हो जाता, वो अपने आप च भर के नीवा हो गया। आखो वाहिगुरु साहिब। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह कहिंदे कि जाहर जहूर हैं, कि जाहर जहूर हैं कि हाजिर है, किन्ना कु चिर जी कहिंदे हमेशा सलाम है, वो ते हमेशा सलाम वाहिगुरु परमेश्वर नानक होसी भी सच जिहड़ा वाहिगुरु आ वो ते सदा जा रहा कोल आ, सद हजूर हाजर है नाजर कते ना पयो दराई। असणो बाणी की लिखी है सद हजूर घट नू आउंदी नहीं आउंदी, सद हजूर बोलो हाजर है नाजर कते ना पयो दराई, कदी दूर होया ही नहीं। अज दे हुक्मनामे ने तुहानू ते मैनू नवाजिया है। आखो वाहिगुरु। आपां नूं कहा कुछ लभण वाली चीज़ होवे ना असीं रब नूं लभदे फिरदे जी, आ हा हा क्या बात आ, की कहिंदे गुआच गया रब, गुआच गया लभी दी कड़ी चीज़ है। सारे बोलो भैन, आप हुण आई है भैन बोलो, जिहड़ी गुआच गई वह लोको रब गुआच गया, रब ते हाजर नाजर आ। आखो वाहिगुरु की आ हाजर नाजर आ, वेखो रब ही तो है। पहले की हो गया मुला पुर, पहले पातशाह ने इनू मत्था टेकया, आख्या रब आ ते मेरा गुरु आ, शब्द गुरु सुरत तो निचेला, बिन शब्दे सब जग भरवाना बिरथा जन्म गवाया, शब्द तो बिना ते दुनिया पागला ते सचे मुची पागला। यार पत्थर रो मत्था टेकन दे, पत्थर दे लो तुसे ताड़े अंदर धड़कन चल दी

बोलो, बड़े औड़ी बोले हो, टेक दे तो नहीं कि ताडे अंदर हरकत चलती, तड़कन चलती, मगर मथा उन्हू टेक दे जिते तड़कन ही नहीं। आखो वाहेगुरु। साहब ने अज क्या ईत ऊत नहीं बिछड़े सो संगी गनिए, अगे बड़ा प्यारा वचन जरा इत उथे ना बिसरे सो संगी गनिए, नहीं पता लगा संदीप नु पुछ, पता लग गया जड़ा इत्थे उत्थे विछड़ना नहीं गा पर नहीं होना वो मेरा संगी आ। आखो वाहेगुरु। तुसी किसे बाबे नु मनदे हो, किसे पीर नु मनदे हो, पकंबर नु मनदे हो, वो तो मर गया, ताडे नाल कौन जाऊ। ईत ऊत नहीं बिछड़े सो संगी गनिए, बिनस जाए जो निमक में। किन्ना किन्ना आउंदी बाणी, बिनस जाए निमक में ने अख दा फरका, इन्ने चिर ची तुहाडे नाल आ ते इन्ने चिर ची जां तुहाडे सवास उड गया जां उहदे सवास उड गया छुट गया। बिनस जाए ईत इत्थे ऊत नहीं बिसरे सो संगी गनिए, बिन सजाए जो निमुख मैं सो अल्प सुख बनिए। मेरी सरकार ने अज कहा सिख पंथ दे विच, आखो वाहिगुरु, इस धर्म दे विच पत्थर दी पूजा मना, पिपल दी पूजा मना। बोलो अज की गल आ, की गल हो रही अज है नाल आया। अच्छा तो फिर उन्हूं आ जड़ा ये जड़ा ये नाल दा नहीं, ये नाल वाला नहीं, 24 घंटे गुरु मेरे संग ना। एक तरह करो एक जगह ते टेक के, मैं तो कहना मेरे वाल ना वेखो, उधर वेखो, शायद कितने वेखदा वेखदा अख ही खुल जाए। इधर वेंद्या वेंद्या अनिया हो गई, समाज नूं वेखदा वेख्या अखां, सारी एनर्जी लग गई अखां दी। इधर वेंदे रहो वेंदे रहो वेंदे रहो, पता नहीं मेरी सरकार कितने अख खोल ही दे। वेंदे रहा करो टिकटकी ला के। आखो वाहेगुरु। वो आज हुक्मनामा सी, बिनस जाए जो निमख में सो अल्प सुख पनिए। अल्प दा पता है नहीं, जिहड़ा एक अख दे फरके ना छुट जावे उन्हें थोड़ा सुख मनो, अल्प में ना थोड़ा, अल्प सा उस सुख नू थोड़ा सुख मनो, संदीवी सुख ना मनो, जिहड़ा एक छिन दे नाल ही विसर जावे, मेरे तो परे हो जावे। गरीब नवाज दया करे, एक थां ते कहिंदे सरकार जी कल एक दो बंदे मैनू मिलना है। आखो वाहेगुरु। वो कहन लगे जी अंदर शहनशाह है, अंदर पातशाह है, अंदर पातशाह है। मैं पूछ लिया, मैं से ऐ अंदर दी गल करदे हो, फिर तो सच आ। जे तुसी किसे कोठे दी गल करदे हो भी उत्थे पातशाह उत्थे पातशाह, फिर उन्हें मैनू दस्या तुहाडा भेद दूर करन कहन लगा। फिर उन्हें मैनू दस्या पंज प्यारे अमृत छकाउण डै ही सामने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश से। मैं कहा तुसी बार बार ये कहो ना भी अंदर पंज प्यारे साहबान से। आखो वाहेगुरु। ते पंज प्यारे भी वो जिहड़े जीवन वाले बाणे वाले बाणी वाले, ते सामने गुरु ग्रंथ साहब का, फिर तो मैं मानता भी पातशाह तो सी, सरगुण स्वरूप भी निर्गुण स्वरूप भी। आखो वाहेगुरु। इन्ना क चेता रखियो भी प्रीति उहदे नाल करनी जिहड़ा संदीवी है। गनीम तेरी सिफत, वड्डी सिफत वाला। तुसी मोदी नूं कहो उहदी बड़ी सिफत आ, हिंदुस्तान दीआं लाइनां दे अंदर अंदर जिथों तक हिंदुस्तान आ
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਬੋਲੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੁੜ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਪੂਗਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊ।

हाँ जी, सरवण गोविंद गुण सुनो, सरवण गोविंद गुण सुनो, सरवण अपने कन्ना नाल केदे गुण सुनो। तन गुरु गोविंद सिंह साहिब, तन गुरु गोविंद सिंह साहिब, तन सारी संगत गूंजा पाओ, ये संसार च बात जा रही। तन गुरु गोविंद सिंह साहिब, तन गुरु

मेरे साहब कहिंदे सरवण गोविंद गुण सुनो, ये प्रीति कर, सोने दे छब्बे नहीं। पुत्रा उदों उस वेले मेरे मालक नूं कलगियां चढ़ाउंदे सी, क्योंकि शरीर सी अख वाहिगुरु प्रसादी हाथी असाम दे राजे ने चढ़ाता। असाम दा राजा आया, वो महाराज लई प्रसादी हाथी लै आया, सोने दी कलगी ले आया। कौन सारे बोलो, इतिहास चेते हो जे, असाम दा राजा प्रेम करदे सी मेरे साहब। सरबन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह कर साध संगत। इतना प्रेम तनाई राम नाल, इतना प्रेम हुंदा ही संगत। आ तुसी हुण किधर बैठे हो, की कर रहे हो? प्रेम कर रहे हो अपने गुरु नाल तां बैठे हो, नहीं तो ताश खेडदे बुढ़े खेडदे कि नहीं बोलो। सिख भरावां दे 80-85% लोग इस वेले जिहड़े शराब पीण डे, तुसी मर्द हो, तुहाडे ते मर्द बापू दी निगाह पैगी, ते तुसी रोज़ उहदी गोद विच आण के वाहिगुरू।

अचर्ज अनूप सा मत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधाम नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा

तेनरसै सहस समपै तेनर दूली चै बह तेनर उथप बिथपै सुख लह तेनर संसार मह अभय पट रिप मद तेहे।

तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाण्यो नैण बैण मोहे एक एक दोहो ठाए ना जानियो सुपन एक पर तख एक इक्कस महलीनो तीस एक आर पांच सिद्ध पैंतीस नखीनो एक हो जे लाख लखो अलख है एक एक कर वरनियो गुर अमरदास जालप पणे तू एक लोड़ है एक मनो। जे मत गही जय देव जे मत नामै समाणी जे मत तिरलोचन चित भगत कंबीर है जानी रुक मांगद कर तूत राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण।

0: देख दर्श पावो मुकत।
1: गुर अमरदास परसिए पहुम पातिक विनाश, गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधिक आसास है, गुर अमरदास परसिए ध्यान लइए पो मुक है, गुर अमरदास परसिए अपहो लभे गो चुक है, एक बिन दुगण जो तो रहे जा सुमंतर मान वैल है, जाल पा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिलह। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहो, ता ते अंगद लहना प्रगट तास चरण लिव रहो, तित कुल गुर अमरदास आसा निवास, तास गुण कवण वखाणो जो गुण अलख अगम तिन्हें गुण अंत न जानो, बोहिथो विधाते निर्मयो सब संगत कुल उदहरण, गुरे अमरदास।

जब गुर देखे शुभ दृष्ट नाम करता मुख मेवा, अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो, गुर अमरदास कारण करण जिम तू रखे तिम रहो। पिखे के गुर ज्ञान और त्यान तस्यो तत् मिलावे, सच सच जानिए इक चित्ते लिवलावे, काम क्रोध वस करे पवन उड़ंत न तावे, नरंकार के वसे देश हुकम बुझ विचार पावे, कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किच कियो, गुर मिलियो सोए पिखा कहे सहज।

ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के वचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज केवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोय गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट वसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जगतारी लह

तीर्थ अपयो, हर का नाम अखै निद अपयो, अपयो हर नाम अखै निद चौ जुग, गुर सेवा कर फल लइयं। बंदे जो चरण शरण सुख पावे, परमानंद गुरमुख कइयं। परताख देहे पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखन परनं। सतगुर गुर सेव अल